चार तनति सबन से गोपाल को जस गाऊ प्राणी अकथ कथा साची मन पा अकथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समाणी रहाऊ कृष्णा भूख सब नासी संत प्रसाद जपया अविनाशी रैन दिन सस प्रभ सेव कमानी हर मिलने की है निशानी मिटे जंजाल हुए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल परा पूर्वला कर्म बनया बन आया हर के गुण नित रसना गाया हर के संत सदा प्रवाण संत जना मस्तक निशान दास की रेण पाए जे कोई नानक तिस की परम गत होई राम कली महला पंजवां दर्शन कौ जाइय कुरबान चरण कमल हृदय धर ध्यान धूर संतन की मस्तक लाई जन्म जन्म की दुर्मत मल जाई जिस भेट त मिटै अभिमान पार ब्रह्म सब नदरी आवै कर कृपा पूर्ण भगवान जे रहाउ गुर की कीरत जपिय हर नाउ गुर की भगत सदा गुण गाउ गुर की सुरत निकट कर जानु गुर का शब्द सत मन सत कर्मान गुरबचनी समसर सुख दुख कदी ना व्यापै तृष्णा भूख मन संतोख शब्द गुर राजी जप गोविंद पढ़दी सब सकाजी गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुरदाता दयाल बखशिंद गुर चरणी जाका मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा राम कली महला पंजवां किस परवासे विचरै भवन मूड़ मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गत नहीं जानै पंच बटवारे से मीत कर मानै सो कर सेव जत उद्रह मीत गुण गोविंद रविए नितिन दिन राति साध संग कर मन प्री मन की प्रीत राउ जन्म विहान अहंकार अरबादु तृप्त न आवे बिख्या साधु भरमत भरमत महा दुख पाया उतरी न जाई दुतर माया काम न आवे सुकार कमावे आप बीज आपे ही खावे राखन कौ दूसरा नहीं कोय तौ निस्तरै जो कृपा होए पातत पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास कहो की जदान कर कृपा प्रभ गात कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजवा ए लोके सुख पाया नहीं भेटत धर्म राया हर दरग सुभावंत पुन गर्भ नहीं पव बसंत जानी संत जना संत की मृतराई कर कृपा दीनों हार नामा पूर्व संजोग मिलाई राउ गुर के चरण चित लागा तन तन संजोग सुभागा संत की धूर लागी मेरा माथे किलबिख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श जीठा नाम प्रभु का कटकट बूठा मटानी सब कल कलेश जिसते उपजे तिसमें प्रवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बखशिंद राम कली महला पंजवां गऊ कौचारी सारदूल कौडी का लख हुआ मूला

पंजवां जी जानत सब पेखी है प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एह मानु हर कै नाम उदारणा राव खिन मैं थापन थापे कुदरत सब ते कर दे के कारणा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा नाम जपत मन निर्मल हो वै सुख है सुख गुदारणा भगत शरण जो आवै प्राणी तिस इहा उहा न हारना सुख दुख मान तिस की बिरथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना अनक बार कोट जान ऊपर नानक वंजै वारना राम कली महला पंजवां अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सबना सै हर स्यों दी मिलाई मेरा गोल परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाई अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पातत पुनीत किए खन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते सुसरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई एक शब्द लिबलाई अंध कूप बिख्या ते काढ़ियो साच शब्द बन आई जन्म मरण का खसा चुका बहुड़ कतह नाताई नाम रसायन ही मन बदाता अमृत की त्रपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गोर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया बड़भागी नानक नरक नरक न जाई काल सियाण भुगत न मेरी पूरे पुर गुरु कमाई जप तप संज सोच है जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिख्या मही गुर सच लाई तराई अपने जीत है आप संभाली आप लिए लड़ लाई साच पता धर्म का बेड़ा बंध या पवजल पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्धा जोनी संभव काल अंधकार दी पाई अंतर जामी जी अनका दाता देखत तृष्ण अगाई एक अंकार निरंजन निरपाओ सब जल थल रहया सुमाई भगत दान भगतां कौ दीना हार नानक जाचै माई राम कली महला पंजवां श्लोक सिखो शब्द प्यारयो जन्म मरण की टेक मखूजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तन राता राम प्यारी हर प्रेम भगत बण आई संत हो सतगुर खेप निवाही संत हो हर नाम लाहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संत हो राव खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन न जाई संतो चरण कमल सौ लागो ध्याना सच दर्श समाई संतो गुण गावत गावत भय निहला हर सिमरत तृप्त गाई संतो मां आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी जी जय सब जियां का सुखदाई संत आप बेअंत अंत नहीं पाई आए गोपूर रहया सब ठाई संत मीत साजन माल जो गुण सोत हर नानक बाप ना बाप मेरी माई संत राम कली महला पंजवां मन वच क्रम राम नाम चतारी कोमन घेर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी राव अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भय दुष्टारी जसते लागे तनै नवारी प्रभ जियो अपनी कृपा धारी उदरे संत परे हर सरणी मां बापाच बिनसे महाहंकारी साधु संगत ही फल पाया एक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगटी जो तुम्हारी तुम समराथ अकाथ अगोचर रवि एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वड़ियाई तेरिया संत जना रे नारी नाम दान नानक वड़ियाई तेरिया संत जना रे नारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

और चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम खीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाउ हर जन के बड़ भाग बडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिला त्रिपतास है मल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तन तुर मस्तक लिख्या लिखास

काही रे मानु चित भय उदम जा आहरु हर जियो परयाउ शैल पत्थर में जंतो पाई ता कारिज का गय कर धरयाउ। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो धरया गुर प्रसाद परम।

ही मन भव करया। उड़े उड़िया वैस कुसांत सबाछे बजरे शरया। तन कबण खलावे कबण चुगावे मन महे सिमरन करया। सब निदान

तुम है शाड़ कोई अभरना त्याऊ जो भर चाहूं सुत मते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का त्रास ने भरे आए हूँ जो सदा हमारे पछा सरिया तुझ जू करे हो रक्षा अच्छा।

और राजधीनी। कहूँ फूल राजा हव बैठा, कहूँ समट पयो शंकर गैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई है चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव।

सवैया। पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कौ आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरियस बान कृपा तुमरी कारु मैं न कहे ओ सब तो बखाने ओ बोहरा।

चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जल में जंते उपायन, जल में जंते उपायन,

ते कोई परम ज्ञानी नहीं हो सकया। रब ते गुरु गोबिंद एक ने, जेड़ा सच्चा पातशाह है उहदी ये बाणी है, सब थाई होए सहाए, चंडी दी वार विचों पहली पौड़ी। इहदे बाद साडे महान इतिहास चों महान शहीदां दी याद दवाउण लई लिखिया गया है, उहनां नूं सिमरो, उन्हां दे दृढ़ निश्चय नूं, उन्हां हटियां जपियां तपियां नूं सिमरो। ओ गुरु दा ही रूप हो गए। ये नहीं तुसीं कह सकदे प्रथम भगौती सिमर कह, कई पढ़ दिंदे श्री गुरु नानक लई ते आए ना, बाणी बदलन वाले ना राम राय वाली हुंदी आ। ये नहीं कह सकदे कि जे इत्थे लिख दिता ना तेग बहादुर सिमरी आ, तुसीं गुरु तेग बहादुर नहीं कर सकदे। ये बाणी है मुखारबिंद तों पातशाही दसवीं ने मुख तो उचारी है। अगे अरदास आरंभ करिए, दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। गुरु नानक दे पात तख्त दा दसवां शाह, दसवां वाली, ओ जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह है उन्हों याद कर लियो, वो देश काल तो रहत तुहाडी सहायता करन वाला। ये नहीं भी काका अमरीका चल गया पढ़ाई करन दे, उत्थे आखे भी मैं जाप पढ़ा ते मेरी मत नहीं होनी। जिथे भी जाके जब जी जाप साहब पढ़ोगे उत्थे ही बल्ले बल्ले आ, कलगी धर के सर्वत्र देशा के सर्वत्र भेसा, हर देश विच हर भेस विच तुहाडी मदद करन लई खड़ा। बकायदा शर्त यह है भी याद करना पैंदा, बच्चे नूं रोना पैंदा दुध हासिल करन लई, भिखारी नूं गिणगिणाउणा पैंदा भीख मंगण लई। ओह हर जगह दे उत्ते सहायता करन वाला है। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। कहिंदे ने जदों तन करके दस गुरु दुनिया तो गए चले, हुण समा आ गया सी, गुरु कुल भी तकरीबन समाप्त सी, चारे दीवे गुरु घर दे बुझ चुके ने, बाबा जीत सिंह बाबा जुझार सिंह दुनिया तो जा चुके ने। बादशाह ने अपनी जोत सदा लई गुरु ग्रंथ विच रखनी है, गुरु मान्यो ग्रंथ का इनू रुतबा देना है। एक गल आखी है, कहिंदे जेड़ा दसां विच भेद समझे, मैं क्यों संखेप विच गुरु नानक तो लैके दस पातशाहियां तक अर्थ कर गया भी ये सारे इको ही जोत ने। जो गुरु नानक लई कह दिता वह गुरु हरकृष्ण लई है, जो गुरु अर्जन लई कह दिता वह गुरु गोबिंद सिंह लई है। श्री नानक अंगद कर माना, जेड़ा बाबा नानक जी वो बाबा अंगद बन गया, अमरदास अंगद पहचाना, गुरु अंगद गुरु अमरदास बन गए। अमरदास रामदास कहावै, बाबा अमरदास जी गुरु रामदास बन गए। साधन लखा मूड़ न पायो, साधन लखा मूड़ न पायो, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड़ न पायो। मूर्खा नहीं समझ आई। उदाहरण लो, दुनिया के उत्ते बड़े बड़े डॉक्टर ने इनी तरक्की कर ली है, आपां भी एक दूजे का दिल भी अदला बदली कर लेने, सुभा तो नहीं साढ़े को बदलिया गया, लो भी एक दूजे का वरत लीजा। पर दुनिया से कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, ना पैदा होया तो ना होगा, जेड़ा एक शरीर चो जोत कढ़ के दूजी विच बिठा देवे। यह तो एक ही होया ही, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन्हें पहले तो कभी तो गुरु अंगद चबा दी, दूजे तो कभी जिमें एक दीवे तो दूजा दीवा बल पैंदा। यह गुरु नानक तो बिना दुनिया के उत्ते किसे को ताकत रुतबा नहीं, एक तो दूजे शरीर में जोत प्रवेश कर दे। सवा लख पैगंबर होए ने इस्लाम विच, कोई नहीं कर सकया। 33 करोड़ देवते ने, कोई नहीं कर सकया। यीशु मसीह कोले ताकत नहीं सी भी जोत किसे दे प्रवेश करवा दे। ये कहदे विच फिर पढ़ियो, सब ते वड्डा
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ।

चवर शतर तख्त दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी।

0: मौन व्रत रख लिया, जबान नहीं खोलनी, कुछ बोलना नहीं, वस्त्र नहीं पहनने, कई तरह के तप रख लीजिए। पातशाह कहिंदे मैनू परवान नहीं। किसी ने पूछा तैनू केड़ा तप परवान है, कहिंदे गुर सेवा तपा सिर तप सार। मैनू सेवा वाला तप पाउंदा है, गुरु कर सेवा कर, गरीब गुरबे की सेवा कर, गरीब गुरबे ते दया कर, सेवा की कसवटी ते तन नूं कसा, ये मैनू तप परवान है। हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया, बड़ा औखा जे जपना, अजकल जपन नूं आ खुद नवा ही काम लभ लिया, जपना औखा कह देंगे जी तोता रतन। महाराज सचे पातशाह कहिंदे ने नाम जप चौंकड़ा ला, बंदगी कर वंड छकिया, वंड के छकना है, थोड़ा भी हो गए ना, वंड के छकना सिख ने। खनी खनी रोटी ते गुजारे करन वालियां दा इतिहास पढ़ियो, चार चार भुखे सिंघां नूं एक रोटी दा टुकड़ा मिलदा सी, ते चपटके नहीं सी खा जांदे, पन्नी पन्नी सती सती देनी, बुरकी बुरकी वंड के खांदे सी। तीन हुक्म ने गुरु नानक ने सिख नूं, नाम जपना, किरत करनी, वंड छकना। हुण वंड छकना तीजे ते क्यों है, ध्यान दिओ। कहिंदे नाम जप रब दी कीमती कर, दूसरा कहिंदे धर्म दी कमाई कर। नाम दी कीमती चो, धर्म दी कमाई चो जो कुछ भी तेरी झोली पिया वंड के छाको नूं वंडिया कर। जे बाणी पढ़दा वी वंडिया कर, होरां नूं वी सुनाया कर, नाल बिठाया कर, जे चार पैसे ने गरीब गुरबे ते दया कर, होरां नूं वी छकाया कर, होरां दे वी पेट दी पूर्ति करिया कर। देग चलाई तेग वाही, देग दा अर्थ है वड्डे मूंह वाला भांडा, ये सिख दी उदारता दा प्रतीक है। सिख जदों लंगर बनाउंदे वड्डे भांडे विच, अपने लई नहीं, पता नहीं कदों तुहाडे दर ते कोई भुखा भाणा आ जावे। जिन्हां ने लंगर लाए, देगां चलाईयां धर्म दी खातर, कहिंदे तेग चलाई, जिन्हां ने धर्म दी खातर तेगां चलाईयां ने, उन्हां दा ध्यान धर्म दी सानूं आ गया है। विचार नूं संकोच दे हुए समाप्ति करिए जी। विचार करदिआं त्रुटियां रह जांदियां ने, भुल चुक दी खिमा फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ਕੇਵੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सत बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पांत, तृप्त अगाने हर गुण गाई, जन नानक हर हर हर त्याई, बसंत महला

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जाके भगत आनंद मै जाके भगत को नाही खै जाके भगत को नाही पै जाके भगत को सदा

प्रसाद मन अगाना हर रसै स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवां तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

ईना अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर दान ना लागे तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए एहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सोहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

तत् ज्ञान सर्ब ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आराधे

रहाउ जिसके तारे तरण आकाश कट कट जिसका है प्रगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान जिसको मिलिया हर निधान जिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपियो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना रहाउ समर

कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाउ, नानक भगता भली रीत।

देख फूल फूल फूले अहंग त्याग त्यागी चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल एक ओंकार।

जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए इन बिद पासा ढालो बीर गुरमुख नाम जपो दिन राती अंत काल नह लागे पीर रहाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर अराते बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेल आपे देख हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

एहो जग है संपत सुपने की, देख कहां ऐ डानू, संग तिहार है कछु ना चाले, ताहे कहां लपटानू, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीरत उरियानू, जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानू, बसंत महला नौवा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल याते गहयो ना जाए, रहाओ जोगी जंगम अर सन्यास, सब ही पर डारी एह फास, जेह जेह हर को नाम समार, ते भव सागर उतरे पार, जन नानक हर की सरनाए, दीजै नाम रह गुण गाए, बसंत महला।

ममता तन ते भागी उपजेओ निर्मल ज्ञान लोग मोह एह परस ना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मन ते निज सुख माहि समाया जां को होत दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावे कहो नानक एह बिद की संपै को गुरमुख पावे।

अंत बार अंत की हुई सहाय। कहो नानक गुणता की गाई। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीता। नाम विसार गिरह देख पीत। मनुआ डोले चीत अनीत। जग स्यों टूटी झूठ परीत। काम क्रोध बिख बजर पार। नाम बिना कैसे गुण चार। रहाओ कर बालू का तू मन घेर। बरखस बाणी बुद बदा हेर। मातर बूंद ते धर चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर। भगत करो पग लागो तोर। नाम रखो चाहो तुझे ओर। नाम दराए चले सो चोर। पत खोई बेखे अंचल पाए। साच नाम रतो पत स्यो घर जाए। जो किस कीनस प्रभर जाए। भय माने निरभउ मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग। पान फूल मीठे रस रोग। छीले बिगसे तेतो सोग। प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस

बिन हर भगती दुख कनेरे, दुख सुख दाते ठाकुर मेरे। रोग वड्डो क्यों बांधो तीरा, रोग बुझे सो काटे पीरा। मैं अवगण मन

रोग व्यापै घट घट रब रहे प्रभ जापै सुख दुख हीते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत भस्म अंधूले।

0: गुण नानक बोले भली बाण, तुम हो सजाखे ले हो पछाण।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
0: Karam Tor Aap

प्रभु दया ते होए प्रगाश, प्रभु दया ते कमल प्रगाश, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम

हर का नाम निदान कल्याणा, हर का नाम, हर का नाम निदान कल्याणा, सुख सहज सारा, सुख सहज

गोर मिल हर हर काया गोर मिल हर हर जिन गोर मिल हर हर काया जिन गोर मिल हर हर गोर मिल हर हर काया जिन गोर मिल हर हर जिन गोर मिल हर हर काया ए लाल भरे पूरे रंग राते गुर मिल हर हर काया लाल भरे ऊंच मूंच

रंग चलू लहराती होरमुख रंग चलू लहराती चलू लहराती वाहगुरु गुरमुख रंग चलू लहराती गुरमुख

किते आख है आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते और करे दाग न सक गई के जे बड़ भावे ते बड़ होए नानक।

आनंद करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथा सोहन पंच परवाण नदरी करम पवै निशान कछ बगाई उथ पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का हो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी बसंतर केते गान महेश केते वर में काड़ दगड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश।

अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देव सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाक नमो भूप भूपे नमो दान दान्य नमो मन माने नमो रोग रोगी नमो दंशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणाशी रूपे रूपे समातुलने वासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता दूरदर्दंगा गंगो हरदा पारंग परम परमेश्वरंग पुरुष पालंग सदा सर्वदा सिद्धदा दयालंग शेदी अपेदी अनाम कामंग समाज तो ब्राजी समाज दास दावंग तेरा जोर जाचरी शंभ जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु अजूंगा दे सब भी सहें पुजंग प्रयात शंभ अगाध्य अबाध्य अनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज तीन दाने नमाज तुवंग नरनाथे नमाज तुवंग परमाथे नमाज तुवंग गंजे नमाज तुवंग पंजे नमाज तुवंग काले नमाज तुवंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे

अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे जल राजे डल साजे खल धर्मंग लाग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद तब प्रसाद आदि रूप नाद मूर्त जोन बुरख पारु सर्व मंत्र मान देव पे बाद उधारु सर्व पालक सर्व काल को सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाव न जा जा कर रूप रंग न देख आदि पुरुष दार मूर्त जो नाद शेख देव पेव न जानी जबे दर्ग देव रूप रंग न जात पासु जानी कह जे बहुत आत्मात न जा जा कर जन मरण विहीन जकर बकर फिरा चतर जाक मान ही परतीन लोक चौदांगे विखय जग जापी जय जाप आदि देवनाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सुर ज्यो स्वयं पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्मदांस ब्रह्म रहत भूत लख पेश अंग राग नरंग जय कह जात पाद न नाम गर्भ गंजन दोष भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीका नस्तिक पुरख दूत गर्भगंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अपंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व

अवैवोचत गुणगान उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश ने सुदेन अनाश आजन बाह कैसदा आजन बाह शान शाह राजन राज भानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनुभूत अंग अपाप अंग गतमित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड अमित गत अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्यंड भटे चाचरी छंद तब प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग निरनामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर बाले चतर जकर गाले चतर जकर बासे चतर जकर बासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म जाये न चित्र न मित्र परे पवित्राय प्रतिशा दिशा दृशा कृषाय भगवती छंद तक प्रसाद कथते क्या शुच देश है क्या पिज पेश है क्या गंज कर्म है क्या पंच परम है क्या पिज लोक है क्या रित सुख है क्या भूत वर्ण है क्या भूत करण है के जगतं कृति है के शत्रुं क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जगतं कृति है के शत्रुं क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुपवन रूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चतरंग बहीन है के कह दीन है के रोजिर जा कर ही मेरा कहे के बाग बे है के गैबुल गैब है के अफबुल गुना है के शान शाह है के कारण गुनंद है के रोजी रहंद है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर माने हैं के सर्वतर दाने हैं के सर्वतर गावने हैं के सर्वतर पावने हैं

केसरवत्र पेखी केसरवत्र पेखी केसरवत्र का जय केसरवत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र राजय के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है।

केसरवत्रका जय केसरवत्रका जय केसरवत्र सुख है केसरवत्र भूख है केसरवत्र त्राण है केसरवत्र प्राण है केसरवत्र देश है केसरवत्र पेश है केसरवत्र माने आए सदैव प्रधान आएंगे सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र सापे आएंगे सर्वत्र बान आएंगे सर्वत्र मन आएंगे सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंगली मैं के परम वही मैं के आकलोला मैं के साहब कला मैं के उसनो बजूंगा तमाम मदरजू है हमें सुलसला मैं श्री कदमदा मैं गनी मल सकाता गरी बल बरासता बल दल मकान है जमीन हो जमान है तमी जल तमा मैं रजू अल दान है हरी फल जी मैं रिया के यकीन है अनेक उल रंग है भेद है पंग है जी जो नवाज है गनी मल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है सुमासल सलाम है सदैव काम है निर्वास रूप है गाद अनूप है अवंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी नाम है त्रिपंगी त्रिकाम है त्रिभर्गं त्रिभाद्य गंजे गाधे शुभं सर्वभाग्य सो सर्वा नराग्य त्रिभुग स्वरूप है स जय सूद है गणाक प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रवाह सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है चाचरी छंद अभंग है रंग बेखा लेख है अपरम कर्म नाद जुगाद है अजय है पय भूत दूत है नाशव दासव दंद बंद है अभगत है विरक्त नाश है प्रकाश है नजंत है सुरंत लेखा देख है अलेख बेगह है हटाय गाय सम है गम है नीला नाद है नत नत जाद जाद चरपट छंद तद प्रसाद

कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत प्रसाद। नमो नरक नाशिष दैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद भूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मत न जत न पात नरसाकं श्रीकं तोमी कहें सदैव प्रभा जय जय भगवती शांत प्रसाद। के जहर जहूर है कि हाज रह जूर है मे सल सलाम समाज सल गुलाम है कि साहब दिमाग है कि उसल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी रहन दें कि राज करहन दें करीमल कमाल है कि उसल जमाल है गरीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीमल सिकन है रासल बिकान है कलंक प्रणास है समाज तुल निवास है अगंजल गनीम रजाय करीम है समाज तुल जवा है कि साहब ग्राह है कि नरक प्रणास है पृथ्वीउल प्रवास है कि नरकं प्रणास है बैल तुल निवास है कि सर्वल गवान है मेसल रवान है दमामल तमीज है समाज तुल अजीज है परंग परमय परमेश्वरं परं परमेश समाधीश है जमीन जमा है मी कल है क्रीमल कुमार है गिरो जमाल है गजलिंग प्रकाश है कि सुभाष है कि अजम स्वरूप है कि भूत है कि बधा है कि आदम प्रभा है गजलंग नंग है कि भंग है मद पार छंद प्रसाद।

साध समूह प्रसन्न भराए जग सत्र सब लोग जपेंगे मानवेंद्र के चंद्र रात अंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वम प्रसाद भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचि पद अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर सरी पद के परसे पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहाँ पहो जो दो लोचन मुद के बैठ रहे भगत ध्यान लगायो न हाथ फिर उलिए सात समुद्र न लोग बर लोग गवायो बास की उपख्यान से बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो साच कहो सुन ले सब जिन प्रेम की उतनी प्रभायो काहूं लान पोचर उसर काहूं लिंग करे लटकायो काहूं लखवार बाची दिशा में काहू पिछा को शीस नवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन आयो कूर कर और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन आयो कूर करया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दै रचा पूर्ण होवे चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत बारा हमरे दोष्टो सब तुम काब हुआ पात दै मोहे बचाव सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करदार मोर अच्छा नज कर दे करे आए सब बैरन को आज संगरे पूर्ण होए हमारी आशा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो अवर चाहो सु तुम दे पाऊ सेवक सिख मारे दारी है जन जन

जब या करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेठ सवधारे आप अपनी बूझो चारे।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बणाइया शब्द तां गाव हरि के रामन जनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो अरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विस्तारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला सुमरा स्वामी सो गमन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले

एक आदत कर्म कमाया के कर्म कमाया आदत शरीर आ जा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचया सु हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया गुर प्रसादी बुझया जा विखारे कै हर बिन वरना।

लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन इस जीना।

श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जास विशंभर एक नाम जप अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एकाकर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कंखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोह उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रव नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभु कै सिमरन अंजन जागै प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्वन धान नान कार रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उधरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आशा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसह साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से धनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन प्रवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कन्हेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कभु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभु मया नानक जन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं करै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सुख कन्हेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जप्त निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जप्त आघावै जे मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पराही अनक विघ्न जह आय संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग
जिह मार्ग के गण जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जह तैंडय महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सुजानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जह महा भयान तप बहु काम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को त्रिपत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक दीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्द सब नसै, संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व तंडोल, पूज सनाहे हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत विख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्य करिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम कर बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अगन माहे होमत प्राण, कनक अस्तव है वर भूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ कि होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न बिख्या टर, जल धोवै बहु देह अनीत, शुभ कहाँ होय कच्ची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच। बहुत त्यानप जमका पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्ण न त्रापै। देख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट अपाव दरगह नहीं सिझै। झूठ सनाही ऊह पयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ देखो मांगै, साध जना की सेवा लागै। जेको अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जेको अपनी शोभा लोरै, साध संग एह होमै छोरै। जेको जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ चो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन कौ धन तेरो नाओ, मिथावे कौ नाव तेरा थाओ।
निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल घटा को देव हो दान। कर्म करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जान हो आपे, आपन संग आप प्रवराते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर्ण जान सुखोई। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हरिया। सगल उद्यम मह उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जास सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जे घट वसै।

नानक ने बही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सी गारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तव नानक सीझै जे प्रसाद धारु पर सुख वसह सुत भ्रात मीत बनता संग हसह जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जा की सेवा नव निंद पावै ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावै दरगह मान किसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मह पतित बिकराल नानक काट ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सोआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहो न सी जाए बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गुवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर क्यों नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरत अनंद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रखे प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हित सर पर होवत जान अनीत बिरख की छाया त्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लप रहो तह अंध अंधार बटाओ स्यों जो लावै नेह ताको हासन आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमै ममता माया।

मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्द कोहर है मिथ्या नेत्र पेखक परत्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर बकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेख विकारा बिन बुद्धे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरात नाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिस कै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख करै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत ने बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहया समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रव शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहि जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ तह सिमरहु तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कत अगर लुभावै जय प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जय प्रसाद सब को मन मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पत से ती घर जावह जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै जय प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूकं पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभु कौ कबहू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिल धना रात त्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख है बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मन हो विस्तार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे

आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्वनिधान प्रभ तेरी माया, आप हो कछु न किन्हु लया। जित जित लाव हो चित लगे हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मिता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग दूजै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया के भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध वडाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध हृदवसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जान, जेता सुन है तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास,
जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भये, नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल कीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी कीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसै प्रसंग। ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म

कथया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी।

विस्तार अस्तपति मिथ्या नाही रसना पर्स मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेखै नेत्र साधु की टहल संग संग हेत कर्ण न सुने काहू किंदा सब से जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अरपै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुदै राम नाम आत्म सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सूखम मह जान अस्तूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो

नानक रचना प्रवृति बहुविध अंक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर में उदासी।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जानन जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आप स्खाओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहुत जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत छिन मह होय जाए भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा बिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कौ कैसे गवै आप कौ जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोय जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही कीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सहस खटे लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न मिल स आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझ आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी।

बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोय, संत कै दुखन तान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जोन लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख से टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहीं, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी पावन राखन हार, नानक संत पावै तां ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहें दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदम त्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दोख न त्रिष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उत्तद करहो दिन रात, तिसह त्याव हो साज गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करै तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नाम।

हर जन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मह सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागह दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत हिला नहीं दुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बुझया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्तूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए तानांत जात। जिन प्रभ जाता सो स्वभावंत, सगल संसार उदरतनमंत। प्रभ के सेव

प्रसन्न अतपदी अबनासी प्रभ मन मह राख मानक की तू प्रीत त्याग तिस्ते परै नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना।

आदि प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पा।

रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस सियाणप लिया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख सुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेट तसंग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरा क्यों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए।

को न पहुँचत प्राणी, अग्न अगोचर तब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सत उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख न ठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला कहार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व

होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न चूटन हारे, सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटा है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ते रथ हसवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै नाम बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत

भक्ति लाए। अष्टपदे जात जनजाति प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो।

प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे दुर्ला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया।

जन्म जन्म का टूटा गंध है, गुर पूरै तत्ते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जप हो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए त्रिय संसार, बिन भक्ति तन हो सी छार, सर्व कल्याण सुख निभ नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इहि सुआओ, नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै करमया, गुरप्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत, हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सुकरणी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगा।

जब अकार इहो कछना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ष शोक कहोक से व्यापत। जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक है हर अग्न पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज स्वभाय तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपन सुन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिना सुन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कह कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करना हार नानक करते का नाहे तुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद देव कहाँ को दीन। जब आपन आप उतार है तो सगन अपसगन कहाँ।

व्याप जय अचल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप को आपे आदेश त्यो गुण का नाहीं प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच से ऊंचा नानक आपस को आप है पहुँचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह

आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक करै आनंद।

दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतरजामी रहो व्याप प्रतपाल जीअन बहुपात जो जो रचे सो तिसै त्यात जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास करमान्या करनहार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक कौ सेवा बन आए हुकम बूझ परम पद पाए इससे ऊपर नहीं विचार जा कै मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अनदन पूज है गुरु के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुहाओ आठ पहर प्रभ देखो नेरा मिटे अज्ञान बिन सह अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बस है तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निभ खेप तुम्हारे एका टेक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाहे तिससे दूर कहाँ को जाए उभरै राखन हार ते आए निर्भौ जपै सब भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख नाम जप

सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै नित न आवत काल, अमर भए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परदास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई आचार्य विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जान सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, धर्म माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसे आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसन तरमाहे, चार कुंट दह दिशे समाहे, तिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरुप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत मह देख, सस्य सूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूँ डोले, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाये।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर पेख। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्यागो तरंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पार ले हो भंडार, नानक गुरु पूरे।

के रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रत्न सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाक मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक निधि खेप हमारी प्रभ की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर धन खाट चलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग तप ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्का वेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै।

जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। पारी उपकारी आए, जन पारी उपकारी आए। जन्म मरण

0: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.